0: प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक
1: स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्य श्री
0: रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन।